0: যে দেখাও তাহারে,
1: তুমি যে দেখাও তাহারে,
0: তুমি যে বেড়িছ,
1: তুমি যে বেড়িছ,
0: কোটি বিশ্বর,
1: কোটি বিশ্বর,
0: সবুরি ভিতরে বাহারে,
1: সবুরি ভিতরে বাহারে,
0: তুমি যে বেড়িছ,
1: তুমি যে বেড়িছ,
0: কোটি বিশ্বর,
1: কোটি বিশ্বর,
0: সবুরি ভিতরে বাহারে,
1: সবুরি ভিতরে বাহারে.
2: இதுவரைக்கும் நீங்க எழுதிக்கிட்டது முதல் சரணம். இனி இரண்டாவது சரணம்.
0: லுஹ ஹோய் துமே,
1: லுஹ ஹோய் துமே,
0: ஜரி பட பரா,
1: ஜரி பட பரா,
0: கெத்தே நயனர கோணரு,
1: கெத்தே நயனர கோணரு,
0: லுஹ ஹோய் துமே,
1: லுஹ ஹோய் துமே,
0: ஜரி பட பரா,
1: ஜரி பட பரா,
0: কেতে নয়নর কোণরু,
1: কেতে নয়নর কোণরু,
0: হস হই পুণী,